असंख मूरख अंध कहोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक।

तारे से तंद्रो गावह जो तुर पहमन रते तेरे भगत रसाले हो रे केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहे।

ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोट आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै कहड़ ते घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरते माते माने बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध

जो अगला गीत मैं भगवान और आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा वो गीत 2002 गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के आशीर्वाद से मैंने मेरी पहली स्मृति बाबा के चरणों में रखी। उस एल्बम का नाम फेथ था और उसका एक ये गीत जिसमें मुझे साई अल्लाह, साई कृष्णा, साई रामा, साई करीम सबके रूप जो दिखते हैं मुझे, मैंने वो जाहिर किए, आपके सामने पेश करता हूं।

सब मिलकर साई को कहे कि हम बहुत प्यार करते हैं साई से। बेझिझक आप हमारे साथ गाएं आई लव यू माय साई, बहुत आनंद होगा।